बैंक पिकअप टिकेट टेस्ट में मंकी ड्रम बॉल मोटरव्हील बैंक पिकअप